अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।
3: आशना अपनी हकीकत से हो ए दहकान जरा, दाना तू खेती भी तू बारां भी तू हासिल भी तू, आ किसकी जुस्तुजू आवारा रखती है तुझे, राह तू रह रो भी तू रहबर भी तू मंजिल भी तू।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GAFM 90.4।
3: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: ईद हमला एवाज चारबाग बंदरबा अमेरिकी हमलन सां केश में फिश पाउडर ठाहींदड़ फैक्ट्री खे नुकसान पहुतो आहे। फैक्ट्री खाली हुजण सबब जानी नुकसान न थियो। अमेरिकी सेंट्रल कमांड पारां ईरान ते हमलनि जो ताज़ो सिलसिलो मुकमिल करण जो ऐलान। सेनेट काम जो चवण आहे त ताज़नि हमलनि में ईरानी कमांड मर्कज़नि फिज़ाई दिफ़ाई ड्रोन सलाहियत ऐं साहिली निगरानी वारनि मर्कज़नि खे निशानो बणायो वियो। बंदर अब्बास में बि फ़ौजी ठिकाणनि खे निशानो बणाए तबाह कयो। कार्रवाईनि जो मक़सदु हरगंज लांग में हमलनि जी ईरानी सलाहियत खे कमज़ोर करण हो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त खेसि डेड लाइन ॾियण पसंदि नाहे।
2: Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done.
1: गुज़िरियल ॾींहुं धमकी ॾींदे चयो हो त ईरान मुआहिदो न कयो त ईंदड़ हफ़्ते बिजली घरनि ऐं पुलनि खे तबाह कयो वेंदो। ईरान में अञा कुझु जंग विढ़ण जी सलाहियत आहे पर इहा घणी नाहे। अमेरिकी फ़ौज ईरान जी तवानाई हथनि खे आख़िर में निशानो बणाईंदी।

ईरानी परडे॒ही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई जो चवण आहे त ईरान जो फ़िलहाल ॻाल्हियुनि जो को बि इरादो नाहे। अमेरिका पंहिंजा वाइदा न पाड़िया त मुफ़ाहिमती यादाश्त तहत ज़िमेवारियूं ख़तम कयूं। ॿी धुर ज़िमेवारियूं ख़तम कयूं त ईरान खे बि पंहिंजे ज़िमेवारियुनि खां पासो करणो पवंदो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाक फ़ौज खे रेड लाइन करार ॾेई छॾियो। कश्मीर मसले जे हल लाइ ट्रुथ एंड रीकंसिलेशन कमीशन जोड़ण जी बि तजवीज़ पेश। आज़ाद कश्मीर जे शहर मुज़फ़राबाद में पार्टी अॻवाननि खे ख़िताब कंदे बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त पाक फ़ौज असांजी रेड लाइन आहे, उन ख़िलाफ़ का बि ॻाल्हि बर्दाश्त न कंदासीं। आलमी साज़िशनि खे समझणो पवंदो, लफ़्ज़नि खे दुरुस्त चूंड करणी पवंदी। कश्मीर में दहशतगर्दी वारी सियासत जी हिमायत न कंदासीं। मौजूदा हालतुनि जो मुक़ाबलो ताक़त सां नथो करे सघिजे, ज़िमेवारी जो मुज़ाहिरो करणो पवंदो। मौजूदा बोहरान हिकु वफ़ाक़ी वज़ीर जी करे थो। वफ़ाक़ी हुकूमत मसलो हल करे कश्मीर जो मसलो कश्मीर में ई हल करणो पवंदो। मोदी सिंध तास मुआहिदे ते हमिलो करे रहियो आहे। असां सभु जवाब ॾियण लाइ तयार आहियूं। सिंधूअ जे पाणीअ ते को बि ठाह न कंदासीं।

0: निकली आया खुशी विचार रक्स।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर न्यूज।
2: दरियाए सिंग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम, यहाँ वहाँ GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तपोए GAFM 90.4 मातली बदी निक एडो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
5: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 0331252576।
5: जी हाँ बुड़ी 3315257786
4: GAFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: Mehran ki sakafat se gunda hua. आवाज की डोर से बंधा हुआ
3: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
4: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
2: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
3: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हाँ 2315525786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।
4: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हा, 2315525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: जो चवण है त ईरान के हर सूरत में शिकस्त डींदासीं, खैस डेडलाइन देण पसंद न है। ईरान के पंहिंजो रवैयो ठीक करण घुर्जे। ईरान मुआहिदो न कयो त ईंदड़ हफ्ते बिजली घर ऐं पुलन खे तबाह कयो वेंदो। ईरान में अञा कुझु जंग विढ़ण जी सलाहियत आहे पर उहा घड़ी नाहे। अमेरिकी फौज जा पंजे ॾींहं बि ईरान ते शदीद हमला। अवाज जा बार बंदर अब्बास केश धमाकनि सां गूंजी उथिया। गवर्नर हकमत खान जो चवण आहे त अमेरिकी हमले सां केश में फिश पाउडर ठाहींदड़ फैक्ट्रीअ खे नुक़सान पहुतो आहे। फैक्ट्री खाली हुजण सबबि जानी नुक़सान न थियो। अमेरिकी सेंट्रल कमांड पारां ईरान ते हमलनि जो ताज़ो सिलसिलो मुकमल करण जो ऐलान। सेनेट काम जो चवण आहे त ताज़नि हमलनि में ईरानी कमांड मर्कज़नि, फिज़ाई दिफ़ा ड्रोन सलाहियत ऐं साहिली निगरानी वारनि मर्कज़नि खे निशानो बणायो वियो। बंदर अब्बास में बि फौजी ठिकाणनि खे निशानो बणाए तबाह कयो। कार्रवाईनि जो मक़सदु हरगम्ज़ लांग में हमलनि जी ईरानी सलाहियत खे कमज़ोर करणु हो।

ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकर कालेबाफ चयो आहे त ईरान कॾहिं बि जंग याजिया नाहे कई ऐं न वरी करे थो, पर मुल्क जी क़ौमी सलामती ऐं मुफ़ादनि जे तहफ़ुज़ लाइ हर वक़्त तयारु रहंदो आहे। दुश्मन जी हिकमत अमली तब्दील नाहे थी। ईरानी फ़ौज खे जहरियत जो मुक़ाबलो करण जी आज़ादी हासिल आहे। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई जो चवण आहे त ईरान जो फ़िलहाल ॻाल्हियुनि जो को बि इरादो नाहे। अमेरिका पंहिंजा वाइदा न पाड़े मुफ़ाहमती यादाश्त तहत ज़िमेवारियूं ख़तम कयूं, ॿी धुर ज़िमेवारियूं ख़तम कयूं त ईरान खे बि पंहिंजे ज़िमेवारियुनि खां पासो करणो पियो। सखर जे सेंटर जेल में क़ैदी मुबैना तौर फाहो खाई आपघात करे छॾियो। 24 वरियनि जे क़ैदी दिनेश कुमार जेल इस्पताल जे वॉशरूम में अगट सां फाहो खाधो। जेल इंतज़ामिया जो चवण आहे त आपघात कंदड़ क़ैदीअ खे शराब जे केस में जेल मुंतकिल कयो वियो हो। वारसन लाश पोस्टमार्टम कराइण खां इनकार करे छॾियो आहे। ऐं 88 मोरीअ में बिरोही धुरिन में ज़मीन जे तकरार तां झेड़े जो जरगो। धुरिन ते 85 लख ॾंड। लाल मोहम्मद बिरोही ऐं खैर मोहम्मद बिरोही धुरिन में 25 सालनि खां हलंदड़ तकरार ऐं झेड़े जो जरगो फ़ैसिलो अली ज़िले चेयरमैन अली अकबर जमाली ऐं ॿियनि जी सरपंची हेठि थियो। फ़ैसिले में 10 ॼणनि जे ज़ख़्मी थियण जो ॿिन्ही धुरिन ते मजमूई तौर 85 लख रूपया ॾंड। धुरियूं ॾंड जी रक़म 2 महीननि अंदर फ़ैसिले जे अमीननि वटि जमा कराईंदियूं।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
2: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
3: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
3: ऐं हां गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
2: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252578 6।
3: जी हां 2315525786
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
5: आई। हाँ, गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हाँ, बुड़ी 361525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज, GFM 90.4।

0: बुलेटिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

मसलो ॻाल्हियुनि ज़रिए हल करण ते ज़ोर भरियो। परडे॒ही तर्जुमान ताहिर हुसैन चयो आहे त ख़िते जी मौजूदा सूरत हाल ते नज़र आहे। पाकिस्तान मसले जे हल लाइ ॻाल्हियुनि ते यकीन रखे थो। धुरियूं सूरत हाल ते सब्र ऐं सहप जो मुज़ाहिरो कनि। तकरार कंहिंजे मुफ़ाद में नाहे। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त नामे ते अमल जारी रहणु घुर्जे। अमेरिका ऐं ईरान जा हिक ॿिए ते हमला जारी। अमेरिकी फ़ौज जा ईरान जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ते फिज़ाई हमला। ईरानी शहर सेननान में हवाई अॾे खे बि निशानो बणायो वियो। सेनेट काम मूजिबि अमेरिकी फ़ौज आबन हरमुज में ख़तरो बणजंदड़ ईरानी सलाहियतनि खे निशानो बणायो आहे। ईरान जा बि ख़िते में मौजूदु अमेरिकी अॾनि ते ड्रोन ऐं मिज़ाइल हमला। ईरानी फ़ौज अर्दन बहरीन ऐं कुवैत में मौजूदु अमेरिकी फिज़ाई अॾनि खे निशानो बणायो। उर्दन 8 ईरानी मिज़ाइल फिज़ा में तबाह करण जी तस्दीक करे छॾी। अमेरिका ईरान में ज़मीन मोकिलण जो इम्कान। अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल जी रिपोर्ट मूजिबि आला सतही इजलास में सदर ट्रम्प खे सिफारती कोशिशनि सां गॾु ईरान में ज़मीनी फ़ौज मोकिलण बाबति ब्रीफिंग ॾिनी वई आहे। ब्रीफिंग में सदर ट्रम्प खे ईरानी बेटनि ते कब्ज़ो करण समेत शदीद फ़ौजी कार्रवाइयुनि बाबति बि ब्रीफिंग ॾिनी वई आहे। ज़मीनी फ़ौज मोकिलण बाबति हतमी फ़ैसिलो सदर ट्रम्प कंदो। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह पारां कणक ज़खीरो ऐं अटो महांगो कंदड़नि ख़िलाफ़ क्रेक डाउन जी हिदायत। सैद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि खुराक खाते बाबति इजलास। सूबे मां 6,10,000 मेट्रिक टन कणक गुम हुजण जी तस्दीक। अमलदारनि पारां गुम थियल कणक मां 1,72,000 मेट्रिक टन कणक हथ करण जी दावा। खुराक खाते पारां कणक जी खोट पूरी करण लाइ पास्को खां वधीक कणक ख़रीद करण जी तजवीज़। वॾे वज़ीर चयो त ग़िज़ाई खोट पूरी करण लाइ हर मुमकिन क़दम खणंदासीं।

सिंध में पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि सरापा एहतजाज। मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा ऐं धरणा। नंदू में हारे नए आबादगारनि प्रेस क्लब अॻियां भुख हड़ताल कई। ठिकराटो में महर माइनर जे आबादगारनि पाणी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। अठहठि मोरीअ जे आबादगारनि जाम लगारी शाख में पाणी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। पोछड़ ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो। चोहड़ जमाली वेझो ॿिनि धुरियुनि में मामूली ॻाल्हि तां झेड़ो। हिकु ॼणो क़तल। ॻोठ गुल मोहम्मद छिरेजो में छिरेजा बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो थियो। जवाबदारम ग़ुलाम नबी खे लतूं मुकूं हणी क़तल कयो। हिकु ॼणे जे क़तल बाद धुरियुनि में छिकताण वधी वई। सांगड़ में पुलिस लाक में फोत थियल बे आईएसपी जी डिवाइस होल्डर जे वारसनि जो लाश रखी धरणो। पुलिस ते अब्दुल्ला लांडर खे तशद्दुद करणु मारण जो इल्ज़ाम। ज़िमेवार अहलकारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो। पुलिस चयो आहे त अब्दुल्ला लांडर दिलि बीहण सबबि फोत थियो आहे।

0: Change is inevitable.
1: Claim the X Factor. It's time to make your next move. Pakistan's first ever XUV Suzuki Fronx.
2: टीह तोला सोना जेवर 1 लख रुपया रोक रकम में भी सामान खड़ी वया इतला ते पुलिस वाके वारी हंद पहुंची जायजो वरतो वाके जो केस दाखिल न थियो मुतासिर इनायत मेमण जो चवण आहे त ज़ाल कैंसर जी मरीज आहे हैदराबाद जी अस्पताल में दाखिल हुआसीं घर बंद पयल हो रात पुट घर आयो त घर जी अलमारी जा ताला टुटल ऐं सामान विखरियल हो टीह तोला सोन ऐं रकम गुम आहे।

0: सखर जे सेंट्रल जेल में कैदी मुबैन तौर फाहो खाई आपघात करे छो। 24 वर्ष जे कैदी दिनेश कुमार जेल अस्पताल जे वॉशरूम में अगट से फाहो खाधो। जेल इंतजामिया जो चवण है आपघात कंदड़ कैदी के शराब जे केस में जेल मुंतकिल कयो वयो हो। वारसन लाश जो पोस्टमार्टम कराने का इनकार कर छो है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।
1: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
2: तपोए GFM 90.4 मातली बदी निक एडो FM रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
2: आई हां गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
1: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
2: असन जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा
1: 0331252578 6।
2: जी हां 2315257786
1: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

अमेरिका ईरान में जमीनी फौज मोकलण ते गौर शुरू करे छड्यो अपना हरमुस भरसा ईरानी बेटन ते अमेरिकी फौजी मोकलण जो इम्कान अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट मूजिब आला सतही इजलास में सदर ट्रंप के सिफारती कोशिशन से गड ईरान में जमीनी फौज मोकलण बाबत ब्रीफिंग डिनी वही है। ब्रीफिंग में सदर ट्रंप के ईरानी बेटन ते कब्जो करण समेत शदीद फौजी कार्रवाई बाबत भी ब्रीफिंग डिनी वही है। जमीनी फौज मोकलण बाबत हतमी फैसलो सदर ट्रंप कंदो।

वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह पारां कणक ज़खीरो ऐं अटो महांगो कंदड़नि ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जी हिदायत। सैद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि खुराक खाते बाबति इजलास। सूबे मां 6,10,000 मैट्रिक टन कणक गुम हुजण जी तसदीक। अमलदारनि पारां गुम थियल कणक मां 1,72,000 मैट्रिक टन कणक हथ करण जी दावा। खुराक खाते पारां कणक जी खोट पूरी करण लाइ पास्को खां वधीक कणक ख़रीद करण जी तजवीज़। वॾे वज़ीर चयो त ग़िज़ाई खोट पूरी करण लाइ हर

0: ਕਿਨ ਕਦਮ ਖਣਦਾ ਸੀ। ਸਿੰਧ ਮੇ ਪਾਣੀ ਜੀ ਖੋਟ ਖਿਲਾਫ ਆਬਾਦਗਾਰ ਸਰਾਪਾ ਇਤਜਾਜ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਨ ਮੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਆਏ ਧਰਨਾ। ਨੰਦੂ ਮੇ ਹਾਰਿਨ ਨੇ ਆਬਾਦਗਾਰਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲਬ ਅਗਿਆ ਮੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਈ। ਠਿਕਰਾਟੋ ਮੇ ਮਹਿਰ ਮਾਇਨਰ ਦੇ ਆਬਾਦਗਾਰਨ ਪਾਣੀ ਖੋਟ ਖਿਲਾਫ ਇਤਜਾਜ ਕਯੋ। ਅਠਹਠ ਮੋਰੀ ਦੇ ਆਬਾਦਗਾਰਨ ਜਾਮ ਲਗਾਰੀ ਸ਼ਾਖ ਮੇ ਪਾਣੀ ਖੋਟ ਖਿਲਾਫ ਇਤਜਾਜ ਕਯੋ। ਪੋਛੜ ਤਾਈ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜੋ ਮੁਤਾਲਬੋ। चूहड़ जमाली वेझो बिन धुरीन में मामूली गाल झेड़ो, एक जणो कतल। गोट गुल मोहम्मद छेरे जो में छेर जा बिरादरी जे बिन धुरीन में झेड़ो थे। जवाबदार गुलाम नबी के लतू मुकू हणी कतल कयो। एक जणे जे कतल बाद धुरीन में छिकताण वधी वही। गोठ में खौफ पखेड़ियल। सांगड़ में पुलिस लाक में फोत थियल बे बीआईएसपी जे डिवाइस होल्डर जे वारसन जो लाश रखी धरणो। पुलिस अब्दुल्ला के तशद्दुद करे मारण जो इल्ज़ाम। जिम्मेवार अहलकारन खिलाफ कार्रवाई जो मुतालबो। पुलिस चयो आहे त अब्दुल्ला दिल बीहण सबब फोत थियो आहे। बंद करोड़े रुपयनि जी चोरी। पुलिस पहुची जाइज़ो वरितो। चोर मण जे घर मां 30 तोला सोना ऐं ॿियो सामान खणी विया। पुलिस वक़्त दाख़िल न थियो। मुतासिर इनायत में चवण आहे त घर बंद पयल हो। रात पुट घर आयो त घर जी अलमारी जा ताला टुटल ऐं सामान विखरियल हो। 30 तोला सोन ऐं रक़म गुम आहे। सखर जे सेंटर जेल में कैदी मुबैना तौर फाहो खाई आपघात करे छॾियो। 24 वरियनि जे कैदी दिनेश कुमार जेल अस्पताल जे वॉशरूम में अगट सां फाहो खाधो। जेल इंतज़ामिया जो चवण आहे त आपघात कंदड़ कैदी खे शराब जे केस में जेल मुंतकिल कयो वियो हो। वारसन लाश जो पोस्टमार्टम कराइण खां इनकार करे छॾियो आहे। सजावल जुणे जो भरिसां
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GAFM 90.4।
4: छावां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हा, 2315525786।
4: GAFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़
6: करो छो।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

के साथ मुखातिब हो चुकी है इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए. तो जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है, जितनी भी प्यारी प्यारी समाते हैं, सबको वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है. ओके जी बिल्कुल. और साथ ही साथ जरा आप अपने हाल चाल भी बताते जाइए स्टूडियो लिसनर्स अंत के फहालत कैसे आपकी हालत है. उम्मीद हम शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. सुपकुल मूड के साथ सुपकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे. तो अभी जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है. फाइनली यहाँ पर एंट्रियां मारी ली. आपको पता ना जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं. तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है. ठीक अब से लेकर पूरे 3 बजे तक. तो बिल्कुल 2 घंटे हमारे पास मौजूद है जनाब. और 2 घंटों में हम इतनी सारी आप लोगों के साथ बातें करने वाले हैं. तो चलिए जी बातों के पंडार को जरा खोलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि यहाँ पर बहुत से लोगों में ऐसे ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं. बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए, यानी कि फ्री हमारे इंतजार कर रही थी. ऐसी बहुत सारी आंटियां, अम्मियां, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान सुबह अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे. वाले गुड आफ्टरनून. साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुने लिए हैं तो जनाब ऑब्जर्व से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपट का मसाला. बिकॉज आली रे आली सिद्राली बोस आपके होंठों पर 440 रुपए की समाई लाने के लिए. तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 रुपए की समाई लाते हैं और पर ऐसा करते ही आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं. और जी आगा से प्रोग्राम किया जाएगा एक बहुत ही प्यारे खूबसूरत से कलाम के साथ. बहुत प्यारा खूबसूरत कलाम जो कि हमारी लिस्ट में मौजूद है तो हम सुनते हैं. उसके बाद हम जैसे ही वापस आप लोगों के पास मुखातिब होते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है. तो बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डे स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से इस्तेमाल करते हैं और खूबसूरत होते हैं.

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तपोए GFM 90.4 मातली बदी निक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
5: आई। हाँ, गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हाँ, बुड़ी 331 525 786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास। आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर। मोरो मीरपुर खास नटियारी सकरन मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपके सिद्रा आपके साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं। शामली प्रोग्राम होना चाहते हैं तो क्या करें कि जी अपना जो है ना आप हमें एक तो ट्रिपल 81 पर मैसेज कर सकते हैं, दूसरा आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट करते रहे ये और हमारे फेसबुक पेज को जो है ना वो फॉलो कीजिए, उसके बाद पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते जाइए। ओके हो गया जी, बिल्कुल। तो ये प्रोग्राम आप लोगों तक

कॉम्पिटिशन किया जा रहा है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. तो व्हाइट ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों को बताते हैं कि आप क्यों इस्तेमाल करेंगे जनाब, क्योंकि भाई प्रोडक्ट तो आप जानते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट है और ये कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं ये भी जानते हैं, लेकिन आप क्यों इन्हें इस्तेमाल करेंगे ये जानना आप लोगों के लिए जरूरी बात हो जाती है. तो बिल्कुल आपको बताते हैं कि अगर आप व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती को कैसे जो है वो बढ़ा सकते हैं, तो खूबसूरती को बढ़ाना आजकल के दौर में भाई बहुत आसान काम हो चुका है, क्योंकि इतने मजे मजे के प्रोडक्ट्स, इतनी शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जब मार्केट में अवेलेबल है तो आपकी तो चांदी चांदी है भाई सोना.

काम करेंगे जी वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, और इसी के साथ साथ बहुत ज्यादा बातें हैं जो कि आप लोगों को बता देंगे, लेकिन जरा टॉपिक रिपीट करते हैं उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता कि आज के प्रोग्राम में टॉपिक क्या पूछा गया है। तो आज मैंने आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताएं, आपने बहुत बार देखा

को नजीर सोलंगी, आसिफ सोलंगी, सलीम एंड तैयब सोलंगी के नाम। चलिए जी, बहुत शुक्रिया हो गया आपका। और फहद डेरी है सऊद डेरी फ्रॉम नवाब। सलाम अदी शो नाइस है तमाम जो मोहब्बतों प्यारे भाजू। और हमारे साथ है जी प्रिंस ए

का प्ले कीजिएगा। ओके डन। और हमारे साथ हैं जी ये दादू खान हैदरी फारूक हैदर जतोई सॉन्ग मास्टर मंजूर जो हाजिर हाजिर हलायूं दादू।

अच्छा अच्छा था जो अदा जब आप इस दुनिया में आई थी तुझी जुबान केड़ी हुई मुझी जुबान त हुई पर मां कुछ गालाई थी कोना हुई मुझे एतरो एटीट्यूड हुआ मां बिन सालन ताई किसा गालो ही कोना हुई मां हाने भी घट गालाई या पर बिन सालन ताई किसा गालाई हुई कोना दसो त ले छोकरी जी अच्छा मिठो सुमरो हमारे साथ है मिस्त्री ओके जी फ्रॉम खानपुर महर से शो सुन रहा हूँ प्रोग्राम लश्कर से है और एंजॉय कर रही आपकी आवाज को प्लीज फायजा अली का गाना सुनेगा दोस्त मुमताज अली सुमरो एंड फराज अली सुमरो सजाद अली सुमरो के नाम चले मैं बिल्कुल आपकी फरमाइश का गाना लगा दूंगी और मोहम्मद अली खोसू हमारे साथ हैं वालेकुम अस्सलाम हैदराबाद अच्छा हैदराबाद से आप हमारे शो सुन रहे हैं आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है उसके लिए बहुत शुक्रिया आपको वेलकम करते हैं ओके जी महामान जमान लगता

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी
1: दिल्ली की
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अमेरिका ईरान जाए कबे ते हमला जारी। अमेरिकी फौज ईरान जे मुख्तलिफ शहरन ते फिजाई हमला। ईरानी शहर सेमनान में हवाई अड्डे के भी निशानो बनायो वयो। सेनेट काम मौजूद अमेरिकी फौज आबना हरमुज में खतरो बणजंदड़ ईरानी सलाहतन के निशानो बनायो आहे। ईरान जाबे खिते में मौजूद अमेरिकी अड्डन ते ड्रोन ए मिजाइल हमला। ईरानी फौज उर्दन बहरीन ए कुवैत में मौजूद अमेरिकी फिजाई अड्डन के निशानो बनायो आहे। उर्दन अठ ईरानी मिजाइल फिजा में तबाह करण की तस्दीक करे छी। पाकिस्तान एक भेरो बीहर अमेरिका ईरान में शुरू थियल छिकताण ते गणती जाहिर करे छी। धुरिन खां सहप ए सबुर जो मुजाहरो करण जो मुतालबो। मसलो गालिन जरिए हल करण ते जोर। परडे तर्जुमान ताहिर हुसैन अंदरावी चयो आहे ते खिते जी मौजूदा सूरत हाल ते नजर आहे। पाकिस्तान मसले जे हल लाइ गालिन ते यकीन रखे थो। तकरार कंहिंजे बि मुफ़ाद में नाहे। पाकिस्तान अमुन कोशिशनि तां हथ नाहे खयो। इस्लामाबाद मुफ़ाहिमती यादाश्त नामे ते अमल जारी रहण घुर्जे। अमेरिका ईरान में ज़मीनी फौज मोकिलण ते गौर शुरू करे छॾियो। अबनार मुल्क भरिसां ईरानी बेटनि ते अमेरिकी फौज मोकिलण जो इम्कान। अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल जी रिपोर्ट मूजिब आला सतह इजलास में सदर ट्रम्प खे सिफारती कोशन सां गॾु ईरान में ज़मीनी फौज मोकिलण बाबति ब्रीफिंग ॾिनी वई आहे। ब्रीफिंग में सदर ट्रम्प खे ईरानी ब्रीफिंग ॾिनी वई आहे। ज़मीनी फौज मोकिलण बाबति हतमी फ़ैसिलो सदर ट्रम्प कंदो। नायब वज़ीर आज़म एसाक डार हिकु ॾींहं जे दौरे ते चीन रवानो। एसाक डार शंघाई में चीनी क़यादत सां मुलाक़ातूं कंदो। खिते जी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल थींदी। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह पारां कणक ज़खीरो ऐं अटो महांगो कंदड़नि ख़िलाफ़ क्रैक डाउन जी हिदायत। सैद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि ख़ोराक खाते बाबति इजलास। सूबे मां 6,10,000 मैट्रिक टन कणक गुम हुजण जी तस्दीक। अमलदारनि पारां गुम थियल कणक मां 1,72,000 मैट्रिक टन कणक हथ करण जी दावा। ख़ोराक खाते पारां कणक जी खोट पूरी करण लाइ पास्को खां वधीक कणक ख़रीद करण जी तजवीज़। वॾे वज़ीर चयो त ग़िज़ाई खोट पूरी करण लाइ हर मुमकिन क़दम खणंदासीं।
1: फलकनाज स्काईलाइन 1, वाइब्रेंट कमर्शियल हब, डबल स्टोरी कार पार्किंग, एनचांटिंग रिसेप्शन लॉबी, High speed lifts, elegant drawing room, spacious TV lounge, American standard kitchen, dining area, 4, 5 and 6 room apartments, ready to lead you to your dream home.
2: मुज़म्मत करके आप किसी इदारे को स्टेटमेंट दे दो और खुद को उनके शौदा के लिए ये बहुत बड़ी ये नहीं किसी भी सूरत नहीं। मौलाना साहब इस बयान को वापस लें। ये मेरी गुजारिश होगी, इल्तिजा होगी, क्योंकि उनकी भी सब बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। उनको चाहिए कि इस तरह के अल्फाजात ना इस्तेमाल करें, इस तरह के बयानात ना दें, उन बयानात को वो वापस लें।
0: सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमण मौलाना फजल रहमान खां शहीदन बाबत बयान वापस वठण जो मुतालबो करे छड़ियो। शर्जील इनाम मेमण चयो त मौलाना फजल रहमान

शहीदनि बाबति ॾिनल पंहिंजो बयान वापसि वठे। बयान वापसि वठण सां मौलाना फज़लुर रहमान जी इज़त घटि न थींदी। मौलाना फज़लुर रहमान मामले खे अञा जो मसलो न बणाए शहीदनि ऐं गाज़ियुनि बाबति बयान जे सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत करियूं था। शहीद पाकिस्तान जो असासो ऐं असांजो फ़ख्रु आहिनि। बयानबाज़ीअ सां शहीदनि जे रुतबे खे को बि नुक़सान नथो पहुचे। सभिनी खे क़ौमी ज़िमेवारीअ जो मुज़ाहिरो करणो पवंदो। हर कंहिंखे पंहिंजो बयान रखण जो हक़ आहे। क़ौमी मुफ़ाद मुतासिर न थियणु घुर्जे। MQM कन्वेनर वफ़ाक़ी वज़ीर डॉक्टर ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी चयो आहे त मुंहिंजे ख़्याल में मौलाना फज़लुर रहमान पंहिंजे बयान ते वज़ाहत पेश कंदो। क़ौमी बयान जो मुतासिर न थियणु घुर्जे।

0: पाणीअ जे कोर्ट ख़िलाफ़ आबादगार सरापा एहतजाज, मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा ऐं धरणा। नंदू मेहारिन ऐं आबादगारनि प्रेस क्लब अॻियां भुख हड़ताल कई। ठिकराटो में महर माइनर जे आबादगारनि पाणीअ कोर्ट ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। अठहठि मोरीअ जे आबादगारनि जाम लगारी शाख में पाणीअ कोर्ट ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। रोहड़ी में काज़ीवाह जे आबादगारनि पारां बे पाणी कोर्ट ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो। पोछड़ ताईं ज़रई पाणी पहुचाए फसल बचाइण जो मुतालबो। चोहड़ जमाली वेझो ॿिनि धुरीनि में मामूली ॻाल्हि तां जहिड़ो हिकु ॼणो क़तल। ॻोठ गुल मोहम्मद छेरचो में छेरेजा बिरादरी जे ॿिनि धुरीनि में जहिड़ो थियो। जवाबदारनि ग़ुलाम नबी खे लतूं मुकूं हणी क़तल कयो। हिकु ॼणे जे क़तल बाद धुरीनि में छिकताण वधी वई। ॻोठ में ख़ौफ़ पखेड़ियल।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: छावा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
0: 0331252578 6।
1: जी हा 2315525786
0: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज जी एफ एम 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

ट्रंप जे धमकिन ते अमल कयो वियो ऐं ईरान जे बुनियादी ढांचे खे निशानो बणायो वियो त खिते जे बचियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो वजूद न रहंदो। ईरानी फ़ौज जे तर्जुमान मोहम्मद अकरमिया चयो त खिते जे मुस्लिम रियासतनि सां टकराव जो इरादो नाहे। जेकॾहिं अमेरिका जी जंग जारी रही त जंग नवनि मुआज़नि ताईं पखेड़जी वेंदी। ईरानी फ़ौज मुल्की वकार सलामतीअ सरहदनि जो तहफ़ुज़ करणु ॼाणे थी।

अमेरिका ऐं ईरान जाइ कबे ते हमला जारी। अमेरिकी फ़ौज जा ईरान जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ते फिज़ाई हमला। ईरानी शहर सेमनान में हवाई अॾे खे बि निशानो बणायो वियो। सेनेट खां मौजूदु अमेरिकी फ़ौज अबना हरमुज़ में ख़तरो बणजंदड़ ईरानी सलाहियतनि खे निशानो बणायो आहे। ईरान जा बि ख़िते में मौजूदु अमेरिकी अॾनि ते ड्रोन ऐं मीज़ाइल हमला। ईरानी फ़ौज अर्दुन, बहरीनी ऐं कुवैत में मौजूदु अमेरिकी फिज़ाई अॾनि खे निशानो बणायो। उर्दन 8 ईरानी मिज़ाइल फिज़ा में तबाह करण जी तसदीक करे छॾी। पाकिस्तान हिकु भेरो ॿीहर अमेरिका ऐं ईरान में शुरू थियल चिकटाण ते ॻणती ज़ाहिर करे छॾी। धुरियुनि खां सहप ऐं सबुर जो मुज़ाहिरो करण जो मुतालबो। मसलो ॻाल्हियुनि ज़रिए हल करण ते ज़ोर। परॾेही तर्जुमान ताहिर हुसैन अंदराबी चयो आहे त ख़िते जी मौजूदा सूरतहाल ते नज़र आहे। पाकिस्तान मसले जे हल लाइ ॻाल्हियुनि ते यकीन रखे थो। तकरार कंहिं बि मुआज़ में नाहे। पाकिस्तान अमुन कोशिशनि तां हथ नाहे खयो। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त नामे ते अमल जारी रहणु घुर्जे। अमेरिका ईरान में ज़मीनी फ़ौज मोकिलण ते गौर शुरू करे छॾियो। अबना हरमुज़ भरिसां ईरानी ॿेटनि ते अमेरिकी फ़ौज मोकिलण जो इम्कान। अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल जी रिपोर्ट मूजिबि आला सतही इजलास में सदर ट्रम्प खे सिफारती कोशिशुनि सां गॾु ईरान में ज़मीनी फ़ौज मोकिलण बाबति ब्रीफिंग ॾिनी वई आहे। ब्रीफिंग में सदर ट्रम्प खे ईरानी ॿेटनि ते कब्ज़ो करण समेत शदीद फ़ौजी कार्रवाइयुनि बाबति बि ब्रीफिंग ॾिनी वई आहे। ज़मीनी फ़ौज मोकिलण बाबति हतमी फ़ैसिलो सदर ट्रम्प कंदो।

एक ॾींहं जे दौरे ते चीन रवानो। एसाकदार शंघाई में चीनी क़यादत सां मुलाक़ातूं कंदो। किथे जी सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल थींदी। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह पारां कणक ज़खीरो ऐं अटो महांगो कंदड़नि ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जी हिदायत। सैद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि खुराक खाते बाबति इजलास। सूबे मां 6,10,000 मैट्रिक टन कणक गुम थियण जी तसदीक। अमलदारनि पारां गुम थियल कणक मां 1,72,000 मैट्रिक टन कणक हथ करण जी दावा। खुराक खाते पारां कणक जी खोट पूरी करण लाइ पास्को खां वधीक कणक ख़रीद करण जी तजवीज़। वरी वज़ीर चयो त ग़िज़ाई खोट पूरी करण लाइ हर

0: करते हैं, आप किसी इदारे को इस तरह कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दें, और खुशी जब उनके शौदा के लिए ये बहुत बड़ी जाती है, ये नहीं किसी भी स्वरूप नहीं होना चाहिए। हम समझते हैं मौलाना साहब इस बयान को वापस लें, ये मेरी गुजारिश होगी, इल्तिजा होगी, क्योंकि उनकी भी सब बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, उनको चाहिए कि इस तरह के अल्फाजात ना इस्तेमाल करें, इस तरह के बयानात ना दें, उन बयानात को वो वापस लें।
1: सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमण मौलाना फजल रहमान खान शहीद बाबत बयान वापस वठण जो मुतालबो करे छो। शर्जील इनाम मेमण चयो त मौलाना फजल रहमान शहीद बाबत दिनल पैंजो बयान वापस वठे, बयान वापस वठण से मौलाना फजल रहमान की इज्जत घट न थी। मौलाना फजल रहमान मामले के अना जो मसलो न बणाए शहीद गाजिन बाबत बयान की सख्त लफ्ज में मजम्मत करूं था। शहीद पाकिस्तान जो असासो असो फखर आन, बयानबाजी से शहीद के रुतबे के को भी नुकसान न तो पहुंचे।

0: सभिनी खे क़ौमी ज़िमेवारीअ जो मुज़ाहिरो करणो पवंदो। हर कंहिंखे पंहिंजो बयान रखण जो हक़ आहे। क़ौमी मुफ़ाद मुतासिर न थियण घुर्जे। MQM कन्वेनर वफ़ाक़ी वज़ीर डॉक्टर ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी चयो आहे त मुंहिंजे ख़्याल में मौलाना फज़लुर रहमान पंहिंजे बयान ते वज़ाहत पेश कंदो। क़ौमी बयानियो मुतासिर न थियण घुर्जे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
3: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

तो जमीन के बाहर, और कोशिश करूंगी कि आपकी कॉल श्यामले प्रोग्राम कर लूं। चलें जी, अभी वक्त है नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम कहते हैं, कौन बात कर रहा है? राइट आंसर अलीजा, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। भाई यही राइट आंसर है, पौधा। और दुरुस्त जवाब के लिए बहुत शुक्रिया अलीजा। और नेक्स्ट जो है आपके मैसेजेस भी मुझे शामिल करने हैं। बलोचा चौहान गुट, हाजी याकूब चौहान नूर मोहम्मद चौहान फैजान चौहान, आपका शो बहुत अच्छा है। ओ माय गॉड, अरे ये तो अब काफी देर हो गई, चले कोशिश कर करती हूँ आपने जो सॉन्ग कहा है ये ब्रेक के बाद। थोड़ा बहुत टाइम है अभी। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है फरमाइशें ऐसे कर रहे होते हैं बहुत लेट आके, या फिर मैं ही मैसेज आप लोगों के लेट पढ़ती हूँ।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: नजरे।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अमेरिकी हमले जी सूरत में खिते जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करण जी धमकी ॾेई छॾी। ईरानी फौज जे खातमुल नबिया हेडक्वार्टर जे तर्जमान इब्राहिम ज़ुल्फ़िकारी चयो आहे त अबना हरमुज ईरान जी रेड लाइन आहे। अमेरिका खे मुदाख़लत करण न ॾींदासीं। ट्रंप जे धमकिन ते अमल कयो वियो ऐं ईरान जे बुनियादी ढांचे खे निशानो बणायो वियो त खिते जे बचियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो वजूद न रहंदो। ईरानी फौज जे तर्जुमान मोहम्मद अकरमिया चयो त हिते जे मुस्लिम रियासतनि सां टकराव जो इरादो नाहे। जेकॾहिं अमेरिका जी जंग जारी रही त जंग नवनि मुआज़नि ताईं पखेड़जी वेंदी। ईरानी फौज मुल्की वकार सलामती सरहदनि जो तहफ़ुज़ करणु ॼाणे थी।

0: लगातार एक डीह के दौरे ते चीन रवानो एसाकदार शंघाई में चीनी क्यादत से मुलाकातू कंदो किते जी सूरत हाल ते गाल बोल थींदी। वड़े वजीर सैयद मुराद अली शाह पारा कणक जखीरो ए अटो महंगो कंदड़ खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। सैयद मुराद अली शाह की सदारत हेठ खुराक खाते बाबत इजलास। सूबे में 6,10,000 मैट्रिक टन कणक गुम थियण की तस्दीक। अमलदारन पारा गुम थियल कणक में 1,72,000 मैट्रिक टन कणक हथ करण की दावा। खुराक खाते पारा कणक की खोट पूरी करण लाए पास्को का कणक खरीद करण की वड़े वजीर
1: पहले एक खिताब के दौरान हमारे पाक अफवाज के जवान हमारे शौदा और हमारे गाजियों के बारे में कमेंट किया गया, जिसके हम भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। आप किसी इदारे को इस तरह को स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दें और खुशतौर पर उनके शौदा के लिए ये बहुत बड़ी जाती है, ये नहीं किसी भी सूरत नहीं होना चाहिए। हम समझते हैं मौलाना साहब इस बयान को वापस लें। ये मेरी गुजारिश होगी, इल्तिजा होगी, क्योंकि उनकी भी सब बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। उनको चाहिए कि इस तरह के अल्फाजात ना इस्तेमाल करें, इस तरह के बयानात ना दें, उन बयानात को वो वापस लें।
0: सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमण मौलाना फजल रहमान खां शहीद बाबत बयान वापस वठण जो मुतालबो कर छो। शर्जील इनाम मेमण मौलाना फजल रहमान शहीद बाबत दिनल पैंजो बयान वापस वठे। बयान वापस वठण से मौलाना फजल रहमान की इज्जत घट न थींदी। मौलाना फजल रहमान मामले के अना जो मसलो न बणाए शहीद गाजिन बाबत बयान की सख्त लफ्ज में मजम्मत करूं था। शहीद पाकिस्तान जो असासो ए असाजो फखर आहिन। बयानबाजी से शहीद के रुतबे के को भी नुकसान न थो पहुंचे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88।
4: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252

0: रखे हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 5:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: अपना शहर, अपना घर, माथली और माथली की आवाज, GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं TFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: ਥੋੜੋ ਤਰਸ ਥੋੜੋ ਤਰਸ ਆਣਿਆ ਸਾੜੀ ਆਣਿਆ ਪਰਸ
1: ਨਰਸ।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।
2: वाली हिन सिंध ते का एड़ी

सदा शहर सिंध जे निज़ारन ते लिखबो, मेहरान जे मौजुन किनारन ते लिखबो, पटके अजरक टोपीअ वारन ते लिखबो, हारन मजदूरन मोचारन ते लिखबो, होशू हेमू दोदे पारन ते लिखबो, मुहन जे दड़े जे आसारन ते लिखबो, जंहिंजो प्यारा सिंध सां तन प्यारन ते लिखबो, ओ दीदार देस वारन दुलारन ते लिखबो, दीदार देस वारन दुलारन ते लिखबो।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: तेज इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करण जी धमकी दई छी। ईरानी फौज जे खातमुल नबिया हेडक्वार्टर जे तर्जमान इब्राहिम ज़ुल्फ़िकारी चयो आहे त अबना हरमुज़ ईरान जी रेड लाइन आहे, अमेरिका खे मुदाख़लत करण न ॾींदासीं। ट्रंप जे धमकियुनि ते अमल कयो वियो ऐं ईरान जे बुनियादी ढांचे खे निशानो बणायो वियो त खिते जे बचियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो वजूद न रहंदो। ईरानी फौज जे तर्जमान मोहम्मद अकरमिया चयो त हिते जे मुस्लिम रियासतनि सां टकराव जो इरादो नाहे। जेकॾहिं अमेरिका जी जंग जारी रही त जंग नवनि मुआज़नि ताईं पखेड़जी वेंदी। ईरानी फौज मुल्की वकार सलामती सरहदनि जो तहफ़ुज़ करणु ॼाणे थी।

अमेरिका ईरान जाके बे ते हमला जारी। अमेरिकी फौज जा ईरान जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ते फिज़ाई हमला। ईरानी शहर सेमनान में हवाई अड्डे खे बि निशानो बणायो वियो। सेनेट खां मौजूदा अमेरिकी फौज अबन हरमुज़ में ख़तरो बणजंदड़ ईरानी सलाहियतनि खे निशानो बणायो आहे। ईरान जा बि खिते में मौजूद अमेरिकी अड्डनि ते ड्रोन ऐं मीज़ाइल हमला। ईरानी फौज अर्दुन, बहरीनी ऐं कुवैत में मौजूद अमेरिकी फिज़ाई अड्डनि खे निशानो बणायो। उर्दन 8 ईरानी मिज़ाइल फिज़ा में तबाह करण जी तसदीक करे छॾी। पाकिस्तान हिकु भेरो ॿीहर अमेरिका ऐं ईरान में शुरू थियल छिकताण ते ॻणती ज़ाहिर करे छॾी। धुरिन खां सहप ऐं सब्र जो मुज़ाहिरो करण जो मुतालबो। मसलो ॻाल्हियुनि ज़रिए हल करण ते ज़ोर। परडे॒ही तर्जुमान ताहिर हुसैन अंदराबी चयो आहे त खिते जी मौजूदा सूरतहाल ते नज़र आहे। पाकिस्तान मसले जे हल लाइ ॻाल्हियुनि ते यकीन रखे थो। तकरार कंहिं बि मुआज़ में नाहे। पाकिस्तान अमुन कोशिशनि तां हथ नाहे खयो। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त नामे ते अमल जारी रहण घुर्जे। अमेरिका ईरान में ज़मीनी फ़ौज मोकिलण ते गौर शुरू करे छडि॒यो। अबन हरमुज़ भरिसां ईरानी बेटनि ते अमेरिकी फ़ौज मोकिलण जो इम्कान। अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल जी रिपोर्ट मूजिब आला सतही इजलास में सदर ट्रम्प खे सिफारती कोशिशुनि सां गॾु ईरान में ज़मीनी फ़ौज मोकिलण बाबति ब्रीफिंग डि॒नी वई आहे। ब्रीफिंग में सदर ट्रम्प खे ईरानी बेटनि ते कब्ज़ो करण समेत शदीद फ़ौजी कार्रवाइयुनि बाबति बि ब्रीफिंग डि॒नी वई आहे। ज़मीनी फ़ौज मोकिलण बाबति हतमी फ़ैसिलो सदर ट्रम्प कंदो।

चार हिक डींहं जे दौरे ते चीन रवानो। एसाकदार शंघाई में चीनी क़यादत सां मुलाक़ातूं कंदो। खिते जी सूरतयाल ते ॻाल्हि ॿोल थींदी। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह पारां कणक ज़खीरो ऐं अटो महांगो कंदड़नि ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जी हिदायत। सैद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि खुराक खाते बाबति इजलास। सूबे मां 6,10,000 मैट्रिक टन कणक गुम थियण जी तसदीक। अमलदारनि पारां गुम थियल कणक मां 1,72,000 मैट्रिक टन कणक हथ करण जी दावा। खुराक खाते पारां कणक जी खोट पूरी करण लाइ पास्को खां वधीक कणक ख़रीद करण जी तजवीज़। वरे वज़ीर चयो त ग़िज़ाई खोट पूरी करण लाइ हर मुमकिन क़दम खणंदासीं।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: जीए एफएम 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एडो एफएम रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलाइण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331252576।
4: जी हाँ 2315525786।
3: जीए एफएम रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माथली और माथली की आवाज़, GFM 90.4।

वज़ीर आज़म खिते में जारी चिकताण सबब हर इम्कानी चैलेंज के मुंह डियण लाइ तैयारी की हिदायत करे छी। पेट्रोलियम शयूं ज़खीरो कंदड़नि ख़िलाफ़ बि कार्रवाई की हिदायत। शहबाज़ शरीफ़ की सदारत हेठ इजलास में पेट्रोलियम शयुनि ऐं तवानाई बचत जी क़ौमी मुहिम में अवाम जे सहकार जी साराह। वज़ीर आज़म चयो त गुज़िरियल सादगी ऐं कफ़ायत शारी मुहिम में अवाम भरपूर किरदार अदा कयो। हुकूमती सब्सिडी तेल अगन में वाद के असर के मौसर अंदाज में कंट्रोल कर वो। आम मानवन मोटरसाइकिल सवार रिक्शा ड्राइवर ट्रांसपोर्टर के भी तहफुज दिनों वो। पेट्रोलियम शयन की हथरादू कोट पैदा करने खिलाफ कार्रवाई कई वे। जरूरत पवण से वक्त आए थी हिकमत अमली जोड़ी वे।

0: हेड लाइन आहे. अमेरिका खे मुदाख़लत करण न ॾींदासीं. ट्रम्प जी धमकियुनि ते अमल कयो वियो ऐं ईरान जी बुनियादी ढांचे खे निशानो बणायो वियो त ख़िते जी बचियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो वजूद न रहंदो. ईरानी फ़ौज जे तर्जुमान मोहम्मद अक्रमीनिया चयो आहे त ख़िते जी मुस्लिम रियासतनि सां टकराव जो इरादो नाहे. जेकॾहिं अमरीका जी जंग जारी रही त जंग नून नवाफ़ज़नि लाइ ताईं पकड़जण वेंदी. ईरानी फ़ौज मुल्की वक़ार, सलामती ऐं सरहदनि जो तहफ़ुज़ करणु ॼाणे थी. अमेरिका ईरान में ज़मीनी फ़ौज मोकिलण ते गौर शुरू करे छॾियो. अफ़ग़ान हुरमुज़ भरिसां ईरानी बीटनि ते अमरीकी फ़ौजी मोकिलण जो इम्कान. अमरीकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल जी रिपोर्ट मूजिब आला सतही इजलास में सदर ट्रम्प खे सिफारती कोशिशनि सां गॾु ईरान में ज़मीनी फ़ौज मोकिलण बाबति ब्रीफिंग ॾिनी वई आहे. ब्रीफिंग में सदर ट्रम्प खे ईरानी बीटनि ते कब्ज़ो करण समेत शदीद फ़ौजी कार्रवाईनि बाबति बि ब्रीफिंग ॾिनी वई आहे. ज़मीनी फ़ौज मोकिलण बाबति हतमी फ़ैसिलो सदर ट्रम्प कंदो.
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिक अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल.
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन.
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा.
3: 0331252576.
4: जी हा, 2315525786.
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़.

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

सिंध हुकूमत सिखर जे इलाइक़े संगरार मां 5 साल अॻु अफ़वाह कयल नींगरी प्रिया कुमारी जी बाज़ियाबी लाइ नई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जोड़े छॾी। डीआईजी सखर जी सरबराही में जेआईटी जांच करे 1 महीने अंदर रिपोर्ट जमा करण जी पाबंद हूंदी। जेआईटी में एसएसपी सखर, एसएसपी शिकारपुर, एसएसपी लाड़काणो ऐं डीएसपी सखर शामिल, एएसआई, एमआईआईबी ऐं रेंजर्स जा मेंबर, रैंक जा ऑफिसर भी मेंबर तौर शामिल हूंदा। घरू खाते जेआईटी जो नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो आहे।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88.9

नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।